आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुने आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 249। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा श्रृंखला सायंकालीन सन्नि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंगलीकर। भाग दूसरा। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:00 से 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रोशन पर। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा। इसके अंतर्गत सुनेगा प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां। इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग प्रस्तुत करता है सुबैर खान। ग्यारह बजे से रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। 1:00 सुरीला सफर। 2:00 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे।

3 बजे सखी सहेली इसके अंतर्गत सुनेगा डिजिटल होते रिश्ते मुहावरों की दुनिया, मुंह में राम बगल में छुरी, सखी विशेष के अंतर्गत उपासना टाकू, फिनटेक कंपनी मोवीक्विक की सह संस्थापक और मुख्य वित्तीय अधिकारी से बातचीत और हल्की फुल्की बातें, सेहतमंद भोजन सुनिएगा। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा। प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। शाम 5:30 पर तारानी नए पुराने। शाम 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 शाम सुनेगा संगीत सरिता कार्यक्रम। आपको फिर से बता दें, श्रृंखला सायंकालीन सन्नी प्रकाश राग, कलाकार गायिका विदुषी आरती अंगलीकर का भाग दूसरा, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन, बाज आए ऐसे फैशन से, लेखन नाजनीन का, निर्देशन है जयदेव शर्मा कमल का। ₹8:15 पर चित्रलोक। ₹9 कार्यक्रम आपके लिए। ₹9:30 पर आज के फनकार। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रोशन पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे छाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 249।

राज्यवटी पहुंचकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान, वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

0: संती प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन संती प्रकाश रागों की चर्चा। आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में सुनिए राग पूर्वी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरती अंकलीकर का नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था पूर्या धनाश्री, बहुत ही खूबसूरत राग है। आज उन्हीं स्वरों में हम शुद्ध मध्यम को जोड़ देंगे तो बन जाएगा राग पूर्वी का सप्तक। देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया है, स्वर वही है पूर्या धनाश्री के, उसमें हमने सिर्फ शुद्ध मध्यम को जोड़ देने से कितनी खूबसूरत कलाकृति बन रही है। इसमें ऋखभ और धैवत कोमल हैं, दोनों मध्यम हैं, तीव्र और शुद्ध। जैसा कि हम जानते हैं ये संधि प्रकाश राग है, इसमें अन्य सभी जो स्वर हैं शुद्ध हैं, वर्जित स्वर कोई भी नहीं। इसकी जाति संपूर्ण है, वादी स्वर गंधार और संवादी

निखात। गायन का समय वही जो संधि प्रकाश रागों का होता है। राग पूर्याधनाश्री से इसको इस तरह से हम अलग रख सकते हैं कि पूर्याधनाश्री का जो सप्तक है वो नीरे गा जाता है और राग पूर्वी का जाता है नीसा रेगा।

राग पूर्वी का जो चलन है वो पूर्या धनाश्री से किस तरह अलग है ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हालांकि इसमें शुद्ध मध्यम के होने के कारण इसकी एक अलग छवि बनती जरूर है, लेकिन इसका जो चलन जाता है

0: রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেন, গিয়েছেন চন্দনা সেনগুপ্ত, আকাশবাণী কৈলাসহর। এখন আকাশবাণীর দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত যথাক্রমে সমাচার প্রভাত এবং মর্নিং নিউজ রিলে করে শোনানো হচ্ছে। এরপর শুনবেন শিলং কেন্দ্র থেকে প্রচারিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইংরেজি সংবাদ।
1: द रेन बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

0: पीसकीपिंग हैज बीन अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: अक्रॉस 10 ऑफ द 11 एक्टिव मिशंस।
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एकतरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक

0: सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मुज से गुजरने पर 20%

0: वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है, हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है, आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। इंडिया ऑफिशियली लॉन्चेस इट्स कैंपेन फॉर इलेक्शन एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2028-29 टर्म। Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said, India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception.
3: Peacekeeping has been a crucial element of maintenance of international peace and security since the very inception of the United Nations. And India has always been in the forefront of discharging that responsibility. Our cumulative contribution is nearly 300,000 deployments in about 50 missions worldwide. Currently, we have 4,300 personnel across 10 of the 11 active missions. As we all know, most of these missions are in Africa. Few countries would have our experience in preparing peacekeeping to be future ready.

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान
1: आकाशवाणी कैलाशहट এখন শুনবেন আধুনিক গান, শিল্পী সাধনা সরগম।

0: আধুনিক গান শুনলেন। শিল্পী ছিলেন সাধনা সারগম, আকাশবাণী কৈলাসহর। এখন আকাশবাণীর দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি এবং ইংরেজি নিউজ বুলেটিন রিলে করে শোনানো হচ্ছে। এরপর শুনবেন মুম্বাই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিবিধ ভারতী।
1: সংযুক্ত রাষ্ট্র সুরক্ষা পরিষদ কে অস্থায়ী সদস্য কে রূপ মে বর্ষ 2028-29 কে কার্যকাল কে লিয়ে চুনাব অভিযান আধিকারিক রূপ সে শুরু কর দিয়া হে। বিদেশ মন্ত্রী ডক্টর সুব্রমণিয়াম জয়শঙ্কর নে নিউইয়র্ক স্থিত সংযুক্ত রাষ্ট্র মুখ্যালয় মে ভারত কি উম্মীদবারী পেশ করতে হুয়ে শান্তি দৃষ্টিকোণ কা অনাবরণ কিয়া। বিদেশ মন্ত্রী নে কাহা কি মৌজুদা বৈশ্বিক পরিস্থিতিও মে সংযুক্ত রাষ্ট্র কি ভূমিকা পহলে সে অধিক মহত্বপূর্ণ হো গয়ী হে। ডক্টর জয়শঙ্কর নে সদস্য দেশো সে ভারত কি উম্মীদবারী কা সমর্থন करने की अपील की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में नौ मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगे। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फु कोक द्वीप में पलट गई थी। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई है। ओमान के पास होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव

0: किया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में रानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य और उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term, launching India's candidature at the UN headquarters in New York. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said, India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception. If elected, India will serve a 2-year term beginning in 2028. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. State governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been asked to coordinate with the bereaved families of the onward transportation of the bodies to their hometowns. Indian Embassy in Vietnam also expressed gratitude to the Vietnamese authorities for their support during the rescue, identification and repatriation process following the tragedy. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 others still missing. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have

तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे राजशेखर और संगीतकार कृष्णा। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। सुनते हैं बाकी गीत।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गाना। नेहा कक्कर और साथियों की आवाजें हैं।

रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजों में आप सुन रहे थे। बोल जयदीप साहनी ने लिखे थे, तर्ज सलीम सुलेमान ने बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें जसविंदर नरूला और सोनू निगम की थी, समीर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: सुनते हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारत।

संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

अश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

सन 1948 में रोशन मुंबई चले आए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक हो गए। खुर्शीद अनवर उन दिनों फिल्म सिंगार को संगीत से सजाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान रोशन की भेंट हुई फिल्मकार किदार शर्मा से, जिन्होंने सन 1949 में रोशन को अपनी फिल्म नेकी और बदी के संगीत निर्देशन की कमान सौंपी। हालांकि फिल्म नेकी और बदी असफल रही, रोशन को अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति का रास्ता मिल गया। इसी दौरान उन्होंने फिल्म बावरे नैन में संगीत दिया। बावरे नैन के निर्माता थे गायक मुकेश।

रमेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

सन 60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीतकार रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं, संगीत से भी प्यार करते हैं, तो एक सवाल हमारा ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है?
1: पुरानी यादें ताजा हो रही है
0: जी।
1: उस जमाने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज, यही आप लोगों की आवाज और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं सकते हैं और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
1: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
0: जी।
1: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
0: जी।
1: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
0: जी।
1: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे

0: जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
1: जी।
0: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: जी, तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है।
0: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबर जाते हैं। दूसरी बात हुए कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
1: जी, जी।
0: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन होना महत्व का है लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
1: जी।
0: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा ये गलत बात है और अन्य से उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल, तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं।
0: राइट, पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है
1: जी।
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं
1: जी।
0: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
1: जी जी।
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है
1: जी।
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है लेकिन तपास करनी जरूरी है
1: जी जी।
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं
1: जी।
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं। उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं
1: जी।
0: जैसे डायबिटीज, जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है
1: जी जी जी।
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स

0: तो एलयूटीएस या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं,
1: जी,
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि प्रोस्टेट के कारण है
1: जी,
0: या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है।
1: जी। तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी, या क्या तरीका है?
0: राइट, सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को,
1: जी।
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सिवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है।
1: जी
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं,
1: जी
0: ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है।
1: नो
0: यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम पीएसए या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है। ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या पीएसए का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है।
1: जी
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार पीएसए का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है।
1: जी
0: पीएसए बढ़ने के भी अलग अलग कारण है, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर पीएसए का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं।
1: जी
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं, या अंदर यूरिन रह जाती है। सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं, और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है।
1: जी
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है।
1: ओके
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं।
1: जी,
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट है, कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है, खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है।
1: जी बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं, तो बेहतर है कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहां पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
0: जरूर, इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है,
1: क्या बात है,
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ,
0: क्या
1: बात है, सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: और डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है।
0: जी, जी।
1: लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: राइट, सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना, या तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाएं आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है। प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाइव रिडक्टेस इनहिबिटर। ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
0: जी।
1: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी।
1: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
0: जी जी।
1: तो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए।
0: जी।
1: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था।
0: जी।
1: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बड़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रिज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सके और पेशेंट को राहत दे सके ये कोशिश रहती है।
0: जी।
1: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं।
0: जी, जी।
1: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं।

0: जी जी,
1: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है
0: जी।
1: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी इसका प्रचार हो रहा है
0: जी जी।
1: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि अरे हमें दो तीन दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
1: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट क्वाइट ऑल राइट। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है। कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है
0: जी।
1: लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था वो अब नहीं रहा है, पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े। तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
1: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की आवाज।
1: किशोर कुमार की आवाज, क्या गाना है
0: जी। सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहां तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है, सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है।
0: जी, जी।
1: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ स्टाइल चेंजेस से, आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं, सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती है और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है।
0: जी।
1: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है।
0: जी, लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो इससे भी नुकसान है। तो डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है। स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर, कुछ चीजें जेनेटिक्स हैं, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
0: जी जी। यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
1: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए।
0: जी, जी।
1: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है। लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है। जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हुए के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
0: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा।
1: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है।
0: जी।
1: सो हर पुरुष को, मैंने बताया, ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है।
0: जी। और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके?
1: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहां इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस, जैसे हम कहते हैं।
0: जी हाँ।
1: कभी कभी वहां पस जमा होता है, जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट

0: प्रोस्टेट में हो सकती है. सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात है बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है.
1: जी, तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
0: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है.
1: जी,
0: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत थी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है, और जब यूरिनरी समस्या बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है. आप बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यह एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा. और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है, तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या हो जाती है. सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है. सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है.
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े That's हुए right. हैं. तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए. कौन सा गाना?
0: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो.
1: ब्लैक पैंथर
0: काफी
1: का गाना.
0: जी हाँ जी, रोमांटिक गाना है.
1: जी,
0: लेकिन
1: जी.
0: किशोर दा ने बहुत अच्छे तरह से गाना गाया है.
1: जी जी. डॉक्टर साहब, आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे.
0: तो हाँ जी,
1: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है. लेकिन एक जमाना था गाते थे
1: जी.
0: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूदिंग थिंग कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है.
1: जी जी.
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है.
1: जी.
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं. सो म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस.
1: जी जी.
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है.
1: जी, तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में सोचेंगे नहीं,
1: बंद हो जाएगा. जी बिल्कुल. तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का.

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है रात में खास तौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तो ये क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ सावधानी रखें कि इस स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट, सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना जरूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं
0: जी।
1: दूसरी बात लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे, रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण

0: किडनी ज्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है। सो काफी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं, और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफी दिक्कतें आने लगती हैं। सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है, वैसा नहीं है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफी बाकी भी ऐसे कॉजेस है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस के पैटर्न रहती है, और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं। सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
1: जी, जी।
0: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होता है। और ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते, कहते कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है।
1: जी, जी।
0: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं, इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
1: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया, और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
0: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं।
1: जी,
0: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं, उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं, क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है। और जब ज्यादा यूरिन जमा होने लगता है, तो धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है। फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है।
1: जी।
0: जब एक समय में खाली नहीं होती है, तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है। ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल।
1: जी,
0: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है, वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए। सो और फोर्थ, इन्फेक्शन, विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफी अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये कॉमन कारण है।
1: जी।
0: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है, और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो, जैसे मैंने बताया, कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, कि काफी लोग मानते कि बहुत पानी पीना चाहिए। सच बात है, पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है, तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है, उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है।
1: जी।
0: और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से, वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा, एक्सरसाइजेस, ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स, ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकें। सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में, और दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए? क्या वजह हो सकती है? महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है।
1: जी।
0: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है।
1: जी।
0: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी

0: स्टोन से, जिसके कारण भी इंफेक्शन हो सकता है. द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है. सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. देयर आर यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है. सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफ स्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है.
1: जी.
0: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है. और थर्ड, फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं.
1: जी.
0: फिर रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है. क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है.
1: जी जी.
0: कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है. तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं. बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है. अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट और काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहां किसी को हम इसके बारे में बताएं.
1: जी, जी.
0: ये गलत बात है. आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है.
1: बिल्कुल. अपने श्रोताओं को बता दें विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट है और बड़े ही जानकार डॉक्टर है. डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम.
0: जरूर.
1: कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना, जो दंगल मूवी में है.
1: जी.
0: बहुत अच्छा गाना है.
1: जी.
0: और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे, फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है. वो गाना अच्छा रहेगा.
1: जी, सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में.

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं। क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं।
0: ओके।
1: और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है। सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में, और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयां ऐसे यूज करनी पड़ती कि जिसके आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी, और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है? तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: वो अवॉइड करना जरूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कहां से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है। सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं।
0: जी, इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी है कई बार आजकल, जब न्यू कपल खासतौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा, वो तुम्हारी वजह से।
1: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये सही नहीं है।
0: जी,
1: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है।
0: जी,
1: हर पेशेंट वेदर इज मैन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है।
0: जी,
1: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है।
0: जी,
1: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है।
0: जी बिल्कुल,
1: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से, इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो।
0: बिल्कुल,
1: ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनीबडी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण

0: इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थितियां बहुत सारी आती हैं, तो आपके इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है, तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं।
1: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है।
0: जी,
1: कुछ चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन इससे शर्म के मारे में कि ये बात हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: जरूर, लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं। कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता है, लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है।
0: ओके,
1: ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी,
1: दूसरा जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: Okay.
1: कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है। ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए, इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक ना हो जाए। सो ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है।
0: जी दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के तीन पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोक वोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: আকাশবাণীর দিল্লি কেন্দ্র থেকে হিন্দি সংবাদ রিলে করে শোনানো হল। আকাশবাণী কৈলাসহর। এবারে শুনবেন বাংলা ছবির গানের অনুষ্ঠান ছায়াগীতি। ছায়াগীতিতে আজকের ছবি মিলন তিথি। প্রথম শিল্পী কিশোর কুমার।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं जेलर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। शहीद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।
6: नौ निहाल फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना दस्तक फिल्म से मदन मोहन की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: আকাশবাণীর মুম্বাই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান রিলে করে শোনানো হলো। আকাশবাণী কৈলাসহর এবারে দিল্লি কেন্দ্র থেকে হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: भारत ने होर्मुस डर्डमरु मध्य से गुजरते हुए दो जहाजों एमटीएल बहिया और एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उपमिशन प्रमुख को बुलाकर इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाजों पर सवार 46 सदस्य चालक दल में से 30 भारतीय नाविक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अल बहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मोम्बासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। इससे पहले अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जर्डमरु मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जर्डमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जर्डमरु मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावों को खारिज किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान का दोबारा समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्ध लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12

0: प्रतिशत तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एल्बर्टन मैदान पर खेला जा रहा है। ये अब से कुछ देर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. India has expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahya and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. The Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the External Affairs Ministry, and a strong protest against these attacks was lodged with him. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. The External Affairs Ministry said in a statement that of the 12 Indian nationals on board MT Al-Bahya, one has lost his life and another has been injured. Of the 18 Indian nationals on board MT Mombasa, 9 have sustained injuries, including 2 who are reported to be seriously injured. The ministry extended condolences to the family of the deceased Indian national and wished speedy recovery to those injured. The Indian mission and post in the UAE are closely monitoring the situation and are in touch with the UAE authorities to ensure all possible assistance to the affected Indian seafarers. New Delhi has strongly condemned these attacks and acts of violence targeting seafarers and disrupting free and safe navigation through international waterways like the Strait of Hormuz. India has also reiterated deep concern on account of the resumption of attacks and escalation of hostilities in the West Asian region and called for immediate cessation of violence and a return to dialogue and diplomacy in the interest of peace, security and stability in the region. The United States launched strikes on Iran for the third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. Military Central Command said it struck areas around Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar, Jask and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites, and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage, while it responded with attacks targeting Bahrain, Jordan, and 2 tankers associated with the United Arab Emirates, traveling through the strait, killing 1 mariner and injuring 8 others. Union Railways Minister Ashwini Vaishnav today informed that Rail Bhumi Portal will be launched to manage the complete process of land acquisition. Briefing media in New Delhi on the reforms aimed at modernizing Indian railways, Mr. Vaishnav said his ministry has brought several reforms, including in the construction sector. He said fertilizers can now be transported in containers. Mr. Vaishnav said fly ash generated in power plants will now be transported in containers so that its fine dust could not pollute the environment. He said in sectors like railways, cement and road construction, fly ash will be transported in containers. Mr. Vaishnav also announced a unified license system under container policy.
3: Fly ash, major environmental hazard. How do we convert this environmental hazard into a usable thing, into a पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये थॉट प्रोसेस के साथ इस रिफॉर्म को लिया गया। अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म

0: बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं.
1: India has reaffirmed continued support to a two-state solution as well as to Palestine's membership of the United Nations. Secretary in the Ministry of External Affairs, Sri Priya Ranganathan, has said, India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She said this while addressing the second ministerial meeting of the Palestine donor group in Brussels yesterday. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the enhanced trade partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030. The Indian men's cricket team will take on hosts England in the first one-day international for three-match series at Edgbaston in Birmingham today. The match will begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
2: আকাশবাণীর দিল্লি কেন্দ্র থেকে হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ রিলে করে শোনানো হল আকাশবাণী কৈলাসহর। এবারে বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান আকাশবাণীর মুম্বাই কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
3: और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा।
3: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तब परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
4: और मंदाकिनी जी, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नजरें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहां भी नजरें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं?
3: अपना मोबाइल चेक करते हैं।
4: हाँ।
3: किसी का मैसेज आया कि नहीं। मोबाइल इतना चुप चुप क्यों है ना? ऐसा लगता है
4: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए, ऐसा लगने लगता है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते तो लगता अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए।
4: बिल्कुल
3: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई, है ना? तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कॉन्टैक्ट जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के लेकिन हमारी सबकी नजरें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
4: बिल्कुल शारीरिक रूप से हम वहां मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं।
3: और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
4: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर एक गीत सुन ले।
3: चलिए

0: फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: नूरा ने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सईद परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।
5: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
6: हाँ, लेकिन चंचल हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
5: अच्छा?
6: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
5: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट की है, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
6: ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं। हाँ। जो उन्होंने काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
5: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे जेवो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है। इसका मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी हैं, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का

0: दुख भी है कि घर में पास बैठे हुए आमने सामने बातचीत का चलन कम होता जा रहा है, जिससे वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ गई।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में तकनीक ने दूरियों को मिटाकर हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने रिश्तों की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक जहां ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहां ये जो डिजिटल

0: गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जहां ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहां ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है। जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहां। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज। और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है
0: और सही लिखी है ना, वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट।
1: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
1: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा भी आपने कहा, हम सब बैठकर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है। इस पर हमें बाकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
1: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान तो चला गया है, सुन भी लिया जाए गीता।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था और इस गीत में सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे एप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज एप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल। और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में

0: ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई हैं।
1: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया, जिससे उनके पति बिपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
0: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
1: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: नंदाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई। तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी, लेकिन अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी, इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी, और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती है ना वो सभी चीजें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहां काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहां काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती है खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022-23 की हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुने गीत।
1: बिल्कुल।

0: चंचल, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में, उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं। कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती है।
0: बिल्कुल, इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
1: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसके जो मतलब हैं, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
0: वो वैसी ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
1: इसीलिए देखिए, हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है। इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहां भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं

0: तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधेरा अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं।
1: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं, लेकिन हाँ अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
0: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग, ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
1: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहां पानी पूरी खिलाया जाता है ना वहां लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ है कि नहीं, बनाने के तरीके साफ है कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
0: और ये जो अभी मौसम चल रहा है इन दिनों में मक्खियां बहुत हैं, तो मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं तो वहां अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है
1: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खानपान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन, इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीजों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, रोड खाना, ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
0: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई उन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं, जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीजें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे, ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम और सबसे बहुत ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है।
0: एक और बात कि तली हुई चीजें जो हैं बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो उस ताजा तेल
1: दोबारा उस तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहर ही खाना पसंद करती है और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों के बजाय ताजी और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
0: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही है कि फायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं। यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज्जा रोटी भी बनती है, घर की जो चीजें हैं स्वादिष्ट होती है। तो ये पिज्जा, बर्गर, ये चीजें हम घर में,
1: ये जहां

0: हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया है।
1: और बच्चे इन चीजों से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियां बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं, और जो बाजार में मोमोज बनते हैं ना, वहां बिल्कुल जो बची कुची सब्जियां उनसे लाकर, कहीं उसमें सड़ी गली भी हो सकती है, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताजी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फायदा भी करेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश, वो यही कहना चाह रही थी कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो प्रयोग कर लिए जाए, और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
1: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है,
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी,
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये एक ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण उन्होंने देकर समझाया है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, झूठी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सभी जानते हैं। मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है। और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा अच्छा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था, हम कॉपी
1: उदाहरण देकर
0: समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता हैं वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे।
1: हाँ, यानी कि बिल्कुल
0: डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए
1: जी जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुलाया यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मेरा ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
2: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पर।
1: अच्छा।
2: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था
1: जी,
2: दे लाइक इट, दे शॉर्टलिस्टेड, कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई एंड आई जॉइन द थिंग। मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी,
2: ताकि वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी, और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था।
1: हाँ,
2: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा।
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम का।
2: हाँ, उनका एक अलग तरीका है।
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
2: फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था।
1: अच्छा।
2: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट कर रहा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेरैज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है।

0: है अर्जुन बिजलानी है
1: जी,
0: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी, तीन पोस्टर फेसेस भी थे एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे, बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कम इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं दिया, उनके लिए सब सेम थे,
1: सब सेम।
0: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले,
1: अच्छा,
0: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे, मतलब एक ही सीन हमारा हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार,
1: जी, जी।
0: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा है,
1: ओ, अच्छा,
0: हाँ,
1: एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते हैं इस रोल के बारे में, क्या बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत बड़ी बात है
1: जी जी जी।
0: वो बड़ा मुझे अच्छा लगा, और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की
1: जी,
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है
1: हाँ,
0: तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस

चाहते हैं बसना धड़कते दिल के हर राग में, चाहते हैं छुपना सांसों की झनकार में, झुक जाएंगे दिल की जानिब, तुम पुकारो तो सही।

देखते ही देखते कर देना घायल, अजी ये तो पहली ही मुलाकात है, बातों ही बातों में दिल चुराने का हुनर, वाह इस हुनर की क्या बात है।

लेकिन वहाँ कोई और थी, इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और पोता खुदा की।

इनको भी है मेरा खुमार, इनको भी है इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो, वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

मंजिल तय हुई, हम सफर भी बन गए, पता न चला ये दो दिल कब एक हुए, हमें पता न चला, मगर फिर भी हमारी उल्फत का चर्चा हर जुबां पे है।

देख लो, सोच लो, अब तो संभलना होगा। मिलना है कल तो आज की रात चलना होगा।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, शुभ संध्या। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है सोल्जर।

लीजिए सुनिए अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं बप्पी लहरी, फिल्म का नाम है शराबी।

0: लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आनंद बख्शी का लिखा गीत है शोभा जोशी और मोहम्मद अजीज की आवाजों में, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है हम।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं उषा मंगेशकर, आशा भोसले और महेश कुमार की आवाजों में। गुलशन बावरा ने गीत लिखा है, धुन है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। ये पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: আপনার লাভ গ্রহণ করার জন্য জনসেবা কেন্দ্রে যান
1: আর বিনামূল্যে নিজের পঞ্জীকরণ করান।
0: প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মান ধন যোজনা অন্নদাতার পরিশ্রমের সম্বল, পেনশন দ্বারা সুরক্ষিত তাদের ঘর। কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক ভারত সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।
2: अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं।
3: छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि, 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान।

0: बुजा पाइखमु माहाय बिसा बिसा खासरग बाखसरग गै सानि थै रामसाबै थैसेरै ब तांना नांगला खामु म तमुनो सलिया हनै काबै तंफुर हंगाकाय बफायुं खायरौ जागै हरान थक तलांगै बिना फिकों बुजा मनि बुजाम रग मिहिम तरंगै मलि दं हांगायबा बफायुं न बाहाय खाय तमानो गै देबो खा खामजागै गबागै काबै तंहाता आसु न पाइखा चाखरा खितुनि कथमा खुलुमबायखा
1: आसुक जरा खनाबाइया कग्रबानी पांडव बैथंग बैसीजा कथम बसा सामानी सैखनरका रुही देव बर्मा दाबो खनाबायानो जादुनी रिसापुं रिसामुंगु खरंग्रवानो फफरी देव बर्मा

आनेले सागबाय आमारे माजान ब जत न फगो थांगा सबा बाय थांलायनाय के ओना जादो सबा बाय थांलाय।

नैले सागबाय आमारे माजान बो जतन फगो थांगा सबा बाय थांलायनाय के ओना जादो सबा बाय थांलाय।

आसिकदरा खनाबाइया जादुनि रेचामुं खरंग रेखा फपरि देवबर्मा आकाशवाणी अगरतला अबुन लगिन पाख्या तिनी हरनी कगबरक पान्दा जतनन हरका हाम।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।